0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो कर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होता। अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते। मिलती है ना, मिलती है याद प्यार, मिलती है रोज मिलती है, सभी को मिलती है ना।

सभा में आई है, नहीं भी है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से भ्रमण

0: Sí.
1: Just done.

Okay.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इसी पर इशारा दे रही है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

ये तो सोचते हैं, पीछे सोचते हैं, पर माँ बाप समान तो किया नहीं, लेकिन कर तो लिया, लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो, संकल्प करने के पहले सोचो, क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो।

सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत बहुत प्यार, ऐसे नहीं समझे कि हमारे से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत
2: Shh.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सीट पर सेट

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो आज

समझ।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है? जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है, समृद्धि स्वरूप नहीं बने हो, सोचते हो
2: So

स्मृति स्वरूप है और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप सोचना स्वरूप नहीं हो, इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मुहूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। समझ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए।

0: चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ ना कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। क्योंकि हर एक टीचर सेवा तो करते ही और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार तो आप ही देखते हैं, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, होते हैं चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते और कहते क्या है क्या करे। मेरे संस्कार ऐसे, संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया है। और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार। अपमानी में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अलबेले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना, ऐसे सभी तीवर पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेहद के फिरती वाला होगा।

0: 色带金明基 Master Sakharov समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। हो गया ना दिल या दिमाग, जब बिजी हो गया किसी भी बातों में तो सेवा क्या करेंगे। फिर जैसे लौकिक में 8 घंटा वर्क करती है कोई, 10 घंटा वर्क करती है, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सके। चाहे मन सा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादार, दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सके, दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते। सुना, समय की पुकार है, दाता बनो, आवश्यकता है बहुत। सारी विश्व की आत्माओं की पुकार है, कौन से इष्ट nisam cina. Am to. Pichiane vale. Jo pare pare hai wohi tata banenge aapka.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी बाप दादा के वरदानों को अपार बनाने के लिए सहज विधि ये अपनाओ के अमृत वेले और साथ में कर्म योगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप स्वरूप में स्थित करो, बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान।

0: पात्र आप विशेष आत्मा है, भक्तों को भी वरदान मिलता है लेकिन वो अल्प काल का एक जन्म के लिए। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहते, इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बुद्धि में नहीं श्रम, स्वरूप उस नशे में रहो। फलक में रहो, फलक रहे मैं वरदाता के वरदानी हूं। डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिए, वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी वाला नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप तो विश्व के परिवर्तकों, विश्व कल्याणकारियों, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं बोलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखो? स्वमान की लिस्ट है, भले बिना बिना टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आते हैं ना, आते हैं, माताओं को आते हैं, माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपने बुद्धि में इमर्ज रखना है? बहुत माला है स्वमान, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समाज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि तनाव में आने का कारण थे अपमान का मैं शब्द, थे पान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ ये
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

पहुंच।

Nurse.

0: करने में मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत का फल खाते हैं। आप सबका भी विशेष प्यार है ना, स्नेह है ना, है स्नेह
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समय लेंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देगा कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।